0: महल महल में बेगम रोवे। अब हम गुजरे दुनिया गुजरी, अब हम गुजरे दुनिया गुजरी।
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.